रजा की और अपनी खुशी की वो दौलत अता करता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब हज से लौट कर कोई वापस घर को आता है वो ऐसे होता है जैसे कोई माँ के पेट से निकला हुआ मासूम बच्चा होता है। अल्लाह जो इस हज को कबूल कर लेते हैं तो फिर हज की कबूलियत के साथ ही अल्लाह ताला हज की कबूलियत के साथ ही इंसान को पाक कर देते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा हज नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: इस मौसम में होशियार रहें, फ्लू, कोविड-19 और दीगर सांस की बीमारियां अब भी मौजूद हैं। अपनी जाती और माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू से मुंह और नाक ढांपें। माय साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तबीयत खराब हो तो फौरन मास्क पहनें और डॉक्टर से मशवरा लें। हुकूमत का सन 2025-26 का सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। अहले अफराद मुफ्त या सब्सिडी शुदा फ्लू शॉट हासिल कर सकते हैं। अगरचे कोविड-19 की मकामी सरगर्मी कम सतह पर है, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप, रेजिडेंशियल केयर होम्स के रिहायशी, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के वो अफराद जिन्हें दायमी बीमारियां हैं, 6 माह या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग जिनका मुदाफती निज़ाम कमजोर है और हमला खवातीन को वक्त पर बूस्टर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखिए, जिसका पता है www.chp.gov.hk।
1: हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से आज तक हर साल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, वो इस सहरोजा अजीम त्यौहार में कुर्बानी के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान हकीम में 17वें पारे में इरशाद है, अल्लाह को तुम्हारे गोश्त खून की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारे तकवे की ज़रूरत है, यानी कितने अखलास और किस नीयत से कुर्बानी करते हो। अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी दीन इब्राहिमी की रूह है। इसी की बदौलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का एजाज़ अजीम नसीब हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद की खातिर सबसे पहले बाप जैसी अजीम हस्ती की मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ी, जिसकी तफसील 16वें पारे के 6 रुकू में मौजूद है। पूरा मुकालमा कुरान ने नकल किया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद पेश फरमाई तो वालिद गुस्से में आ गए और कहा, अगर तुम बाज न आए दावत हक से तो मैं पत्थरों से तुम्हारा सर तोड़ दूंगा और तुम मेरे पास से चले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के दामन को न छोड़ा, बल्कि जवाबन फरमाया, तुम पर सलामती हो, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए दुआ का ख्वास्तगार रहूंगा, वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। इस तरह हक़ुद्दीन की खातिर अल्लाह का ये नबी अपने बाप की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो गया और अल्लाह के दीन की खातिर ये कुर्बानी भी बसत खुशी पेश कर दी। अब दूसरा मरहला आता है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। कुफ्र और शिर्क की तमाम कुव्वतें मुत्तहिद थीं कि अल्लाह के इस बरगुज़ीदा नबी को आग में डालकर जला दें, ताकि हक की आवाज़ बुलंद करने वाला ही न रहे। कुफ्र और शिर्क ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर आग का अलाव तैयार किया, लेकिन दरबारे रब्बानी से हुक्म हुआ, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मरहले में भी सुरखरू हुए। कुफ्र और शिर्क ने हैरान और परेशान अपनी निगाहों से मुशाहिदा किया। तीसरा अहम कुर्बानी का मरहला आता है, वो है वतन और अहले वतन से अलविदा होने का। अल्लाह का नबी बरज़ा और रग़बत हंसी खुशी गुजर गया, अपने वतन को खैरबाद कहा, जवानी गुजर गई, बुढ़ापे की मंजिल आ गई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया और उसके साथ ही इम्तिहान का पर्चा हाथ में दे दिया कि इस शीरख्वार को मैं उसकी वालिदा के उस सरजमीन पर ले जाओ जहाँ न पानी हो, न खाने का सामान हो, न सब्जा लहलाता हो। यह खलीलुल्लाह इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गया और यह कुर्बानी भी दे डाली। बिलाखिर एक और इम्तिहान का वक्त आ गया और अजीम कुर्बानी अल्लाह ने अपने खलील से तलब की, जिसमें ये नबी बरहक 100% पूरा उतरा और ऐसा इम्तिहान दिया कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इकलौते बेटे, वो भी बुढ़ापे में मिलने वाली औलाद को हमारी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे को जब अल्लाह का हुक्म सुनाया तो उस मासूम बच्चे ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, अगर खुदा की यही मर्जी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर पाएंगे। पूरा मंजर कुरान ने नकल किया है। 23वें पारे 8वें रुकू में कयामत तक के लिए महफूज कर दिया गया। हालांकि ये वक्त वो था कि बूढ़े बाप का हाथ बटाए, लेकिन खलीलुल्लाह का बेटा भी इस इम्तिहान में 100% पूरा उतरा। बारगाह खुदावंदी से क्या एजाज मिला, بے شک یہ کڑی آزمائش تھی۔ اللہ کو اکلوتے فرزند کی قربانی مقصود نہ تھی، صرف اپنے دوست کی محبت اور عشق کا امتحان مقصود تھا۔ جب رب نے دیکھا کہ بیٹا منہ کے بل زمین پر ہے اور باپ چھری لے کر تیار ہے، تو اس سے قبل کہ چھری کام دکھائے دربار ربانی سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم، تو نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا، تجھے تیرا بیٹا مبارک ہو، ہمیں تیرے بیٹے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف آزما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ تو ہماری محبت میں کتنا صادق ہے، تو واقعی صادق نکلا، لیکن تیرا بیٹا عاشق صادق نکلا۔ اس عشق و محبت کے امتحان میں پورا اترنے اور قربانیوں کے سلے میں ذات ربانی سے یہ نوید ملی، میں تمہیں بنی آدم کا امام بناؤں گا۔ اور اس امامت کبریٰ کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جن پر امامت، نبوت، رسالت، معصومیت سب ختم ہو گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی دین پسند کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس اعلان کو زبان ختم نبوت سے اس طرح کرایا گیا، اور کہہ دیجئے اے محمد عربی، مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھایا، یعنی دین قیم، جو طریقہ ہے ابراہیم حنیف کا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی‌الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔